अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। हम आज तो संसार में ही रमे हैं, हम जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक

क्या लेना है और कितना लेना है ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है। उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये ले नहीं, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया,

0: फकीर आका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे। राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है। राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे। बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना। अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें। बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागे हो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है।
1: कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को
0: अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

0: पावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंध में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर

0: पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, रघुनाथ जी प्रेम से आरोपते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,
1: भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो।
0: प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई, मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है, बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए है।

0: फल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मानप्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मानप्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो। अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? ना कहिए ना सुनिए। और संत हो, फिर तो नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डालिए। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध। कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं औरन की कौन चलावे, जो यह बात मन में न आवे। कह रहे तीन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समान। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समाध। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ही लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी.
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ. सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ.

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया, पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है, ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया, और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है, फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो, इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है, डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ, निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए, 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का

यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7, 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, 4 दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। Being with a winner makes you a winner and being with a loser will make you a loser. Ladies and gentlemen, ये 5 principle अगर आप अपने जीवन में implement कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स,
1: कोलार गोल्ड फील्ड
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Anjali. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी, वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ, तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: making love songs.
1: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जब एक तरफ इतनी गर्मी होना और दूसरी तरफ बस फ्री के आम मिल जाए तो कौन नहीं खाना चाहेगा उन आम को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई आज इंडिया की नहीं, आज इंडिया से थोड़ा बाहर चलकर बात करते हैं, यानी कि आज बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर लगी है आम की महफिल। हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं ना अपना जायका साथ उठा कर ले जाते हैं। सो अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिक मैंगो पार्टी ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। सो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये मैंगो पार्टी, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हो रही है। अगर इस इवेंट की बात करूँ तो इस इवेंट में लोगों को इंडिया की फेमस मैंगो वेराइटीज का फ्री टेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया गया। और इतना ही नहीं, जब ये पार्टी शुरू हुई और लोगों ने टेस्ट किए ना मैंगो, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके वहां पर जमा हो गए सिर्फ और सिर्फ मैंगो टेस्ट करने के लिए। बिकॉज अगर बात करें ना तो इस पार्टी में बहुत वैरायटी के मैंगो आए थे, जैसे अल्फेंजो मैंगो, केसर मैंगो, इसके साथ दो चार वैरायटीज और आई थी। और इन आमों की जो मिठास है ना और जो फ्लेवर है, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और अगर मैं आम और इंडिया की कनेक्शन की बात करूँ ना तो बहुत ही पुराना कनेक्शन है। इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर माना जाता है और यहाँ आम सिर्फ फ्रूट नहीं एक इमोशन भी है। बिकॉज अगर गर्मियों की बात करें ना तो गर्मियां आते ही ना हम आम की बहुत सारी वैरायटीज खाते हैं, कहीं आम रस, आम बनना, मैंगो शेक, आम का अचार तो एवर ग्रीन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आम को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। सो अगर हम इंडियंस अपनी बात करें ना तो हमारे लिए ना हर चीज में इमोशन है। सो इंडिया में समर का मतलब वेकेशन नहीं, आम होता है, ये तो हम सबको पता है। और अब तो शायद बाहर देश को भी ये बात पता चल गई है कि आम खाना है तो इंडिया का खाना है। और लगता है अभी आम प्यार सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। और धीरे धीरे करके देखते हैं ये इंडियन आम कहाँ तक पहुँचता है। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मल्टीप्लेक्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।
4: रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड की होना तो भाई यहाँ पर नेगोशिएशन करना बहुत टफ होता है, लेकिन अपनी इंडियन मॉम्स सुपर मॉमी तो भाई इनके सामने तो एचआर भी वीक पड़ गया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस पे मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। सो स्यापा ये है कि अप्रेजल मीटिंग में हो गई सुपर मॉमी की एंट्री, यानी कि सोशल मीडिया पे ना इन दिनों एक फनी सटायर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुग्राम के एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी अप्रेजल मीटिंग में अपनी मम्मी को बुलाया। सो भाई मम्मी ने यहाँ पर ऐसी नेगोशिएशन की ना कि सैलरी हाइक के साथ साथ ना प्रमोशन भी मिल रही है। तो भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर और वायरल स्टोरी का हाईलाइट सामने आया और हाईलाइट ये है, मेरा बेटा डेडलाइन की वजह से खाना नहीं खाता आपको पता है और आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एचआर पॉलिसीज वर्सेस इंडियन मॉम इमोशंस बहुत जोरों पर थे इस वीडियो के अंदर नजर आए। अप्रेजल मीटिंग बन गई सब्जी मंडी स्टाइल बार्गेनिंग। सो भाई यही होता है। तो भाई जितने भी आज मुझे ऑफिस वाले सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बॉस सुन रहे हैं ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा तो उसे दीजिए ना, जो मेहनत आपको नहीं दिखती ना वो घर पे मम्मी को दिख जाती है। सो ये स्टोरी कम्प्लीटली सटाया है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए। सो अगर इंडियन मॉम्स की बात करूँ ना तो वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो कॉर्पोरेट डील्स भी क्लोज कर सकती हैं और ऑनेस्टली भाई सुपर मॉमीज का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस भी आपको दुखी कर रहा है ना तो आज अपनी मम्मी को लेकर जाइए ऑफिस में और बस बात करा दीजिए मम्मी से कि सैलरी हाइक भी हो जाएगी और आपके बॉस को थोड़ा सा आपसे डर भी लग जाएगा। वेल सो इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया एक म्यूजिक ब्रेक लेने का, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महाराज में मॉर्निंग एक्सप्रेस शो। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिलौती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

लगता है ये जो दिल्ली एनसीआर के और नॉर्थ इंडिया के लोग है ना, सिर्फ इन्हीं को गर्मी लगती है। यही रीजन है कि इनकी गर्मी को दूर भगाने के लिए ना इन सबका जीपीएस सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है, वो है पहाड़। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री, आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो भाई, गर्मियों से परेशान होकर ना लोग पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनसे अब पहाड़ भी परेशान हो गए हैं। बिकॉज अगर बात करें ना पहाड़ों की, तो मैदानी इलाकों में उस टाइम पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, और इस वजह से हजारों लोग वीकेंड और समर वेकेशन के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि मनाली, रोहतांग, नैनीताल, औली और बद्रीनाथ, इन सभी डेस्टिनेशंस पर गाड़ियां चल कम और रेंग ज्यादा रही है। अब आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया है पहाड़ों पर कि पहाड़ों को भी सांस नहीं आ रही है, और यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों पर खुली सांसें लेने के लिए। फिर ये सब पता होने के बावजूद भी ना हम रुक नहीं रहे, हम जोरों शोरों से पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई, पहले तो ये जानिए कि हम पहाड़ों की तरफ जा क्यों रहे हैं। ठंडी हवाएं लेने, बर्फ के नजारे देखने, रेनी वेदर इंजॉय करने और सिटी की हीट से थोड़ी दूर। लेकिन आपको पता है, इस वक्त ना पहाड़ों पर ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बहुत लंबा किलोमीटर का जाम। सो माय डियर लिसनर्स, बस एक रिमाइंडर लेकर आई हूँ कि ट्रिप ना फिर कभी प्लान कर लीजिएगा, ये गर्मी एसी में बैठकर कम कर लीजिए, पहाड़ों का थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो शायद हम हेल्दी रह पाएंगे। और अगर गर्मी की बात करूँ ना, तो गर्मी का लेवल ऐसा है कि लोग सोच रहे हैं ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो भी चलेगा, बस एसी वाली हवा नहीं चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवल टिप लेकर आई हूँ। सो आज की ट्रैवल टिप ये है, अगर आप भी पहाड़ों का प्लान बना रहे हैं तो होटल्स पहले से बुक कर लीजिए, ट्रैफिक अपडेट्स चेक करके ही पहाड़ों पर जाइए, और पेशेंस फुल टैंक में भर कर जाइएगा। कि अगर आप ट्रैफिक में फंस भी जाए ना, तो आपको खुद पर गुस्सा ना आए कि क्यों ये ट्रिप बनाई। और यही कहना चाहते हो कि पहाड़ों में वेदर कूल है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी कूल नहीं है। सो आपके मूड को कूल करने के लिए ही मैंने आपको आज ही अपडेट दिया, सो दैट कि आप फंस ना जाए पहाड़ों में। सो इन बातों का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर ये शो।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इंसान के पास भी एक हिडन थड़ाई हो सकती है। कभी सोचा है इस बारे में? वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम बात करें एक हिडन थर्ड आई की। नहीं नहीं, ये वो सुपर पावर वाली थर्ड आई नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होता है। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइनी ऑर्गन होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, और कभी कभी ना इसे बॉडीज थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट और डार्कनेस के एक सिग्नल से जुड़ा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड करता है क्या? सबसे पहले तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करती है ये ग्लैंड, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सपोर्ट करता है, एंड इस वजह से ये हमारे स्लीपिंग हैबिट्स और डेली रिदम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रिसर्चर्स का मानना है कि स्ट्रक्चर की एवोल्यूशनरी रूट्स कैरोडन साल पुरानी हो सकती है, यानी कि कुछ रेप्टाइल से मिलती जुलती। और इतना ही नहीं, साथ ही एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा कितनी अमेजिंग है एक ह्यूमन बॉडी, जिसे सिर्फ बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर बहुत सारी हिडन चीजें अपने अंदर रखी हुई है। सो नेचर की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी शायद हमारे अंदर ही छुपी हुई है, ये हमें रिसर्चर्स बताते हैं, और शायद इसलिए अच्छे स्लीप को हेल्थ की सुपर पावर कहा जाता है। सो माय डियर स्लीपी आउल्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो अपनी नींद जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें किसी चीज को देनी चाहिए ना, तो वो हमारी नींद है, बाकी सारे काम बाद में। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए मोम बीबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें।
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरियाज है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। तो कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरिया के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो
0: जी,
1: उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉयल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉयल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद। बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है
0: जी,
1: तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना है, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देखना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक,
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी। जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करिए ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा, तो जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है,
0: जी
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो। मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में, तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को, तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहां से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका

0: इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 10:07 हो रहे और 33 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है। जहाँ आजकल परसों 3 दिन यानी कि 24 तारीख तक बादल छाए रहने की संभावना, बीच बीच में बारिश भी हो सकती है, कुछ आंधी कुछ हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन 24 तारीख के बाद से धीरे धीरे तापमान बढ़ता नजर आएगा। 3 दिन थोड़ा मौसम का और लुत्फ उठा लीजिए जनाब, उसके बाद गर्मी बढ़ती नजर आने वाली है। और साथ ही बात करूँ AQI की, AQI 113 बना हुआ जो अनहेल्दी है, सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा विषय है जिसपे सोचना और जिसपे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन की बात करें तो बस सिर्फ इतना ही कि जहाँ भी पॉसिबिलिटीज हैं कारपूल करें, गार्बेज ना चलाएं, पास गार्डन सोसाइटीज में वाटर फॉगिंग करें, हम ही अपने शहर की हवा को साफ सुथरा बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाएं। बाकी चर्चा उतरेंगे सुपर रिकॉर्ड रैंक।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर से। पहले फरीदाबाद की गलियारों की चर्चाएं। यहाँ अब हम बातें करते हैं दोस्तों, जहाँ फरीदाबाद शहर में मांगर में वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर भी बनने जा रहा है। कैमरा ट्रैप से लेकर रिसर्च तक एक ही जगह होगी पूरी तैयारी। सब जंगल नहीं, यहाँ पे एक लैबोरेटरी भी बनाई जाने वाली है। जी हाँ, मांगर की अगर बात करें सेंटर लेवल जीवों की, जी हाँ, वन्य जीवों की गिनती पर भी सीमित नहीं रहेगा। यह डाटा तैयार किया जाएगा जिसमें समझने में मदद होगा कि यहाँ पे पर्यावरण गतिविधियां और साथ ही साथ वन्य जीव किस किस प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं और कितने रह रहे हैं। खास बात यह होगी जहां पे कैमरा ट्रैप के डाटा भी होंगे, वन्य जीवों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। रिसर्च वर्क एक ही जगह और योजनाओं को कहीं ना कहीं आधार मिलेगा नया रिकॉर्ड तैयार करने का। बहुत जल्द मांगर में ऐसा होने जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को और अच्छा बढ़ावा देते नजर आएगा ये रिसर्च सेंटर। बाकी ऐसी चर्चा मिलती रहेंगी उससे पर्यटक।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यार दोस्तों हम बात करते हैं अब एक नए स्कैम की बात के लिए, नई चाल की बात कर लीजिए, जहाँ ठग ठग गैंग इस टाइम में सक्रिय हो रखी है। काफ़ी ऐसी मामले सामने आए हैं, काफ़ी ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पे हो गई कि आप कार में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके तो कोई लगेज है, कुछ लैपटॉप बैग्स या कुछ भी, सबसे पहले वो लोग आपकी निगरानी करेंगे, फिर देखेंगे, फिर कहीं ना कहीं किसी सिग्नल पर रुके या जहाँ पे आपकी कार रुकी है वहाँ नॉक नॉक करेंगे, बोलेंगे या तो आपके पैसे गिरे हुए हैं या बोलेंगे आपका टायर पंचर है, उससे पहले आपका टायर पंचर कर दिया जाएगा। पैसे गिरे तो आपको गेट के पास, कार के गेट के पास पैसे गिरा दिए जाएंगे, कोई भी बहाना लगाएगा। और जब आप टायर चेक करने के लिए कार का लॉक खोलेंगे या फिर पैसे उठाने के लिए कार का लॉक खोलेंगे, तब एक साइड से तो आप दूसरे पर्सन से बात करें, दूसरी साइड से अदर पर्सन शीशा खोल के या फिर बहुत धीमे से गेट खोल करके वो बैग, वो लैपटॉप बैग या आपके ऐसे ज़रूरी सामान को ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इस मामले में सक्रिय रहें, कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप विंडो से ही बात करें या कोई भी आपको ऐसा लगता है तो उनकी बातों में ना आए। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेद एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों सिनेमा के गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन से नए गाने सिनेमा के गलियारों में रिलीज होने को है तैयार, तो कहीं होगा नई कहानियों का आगाज। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टार्स नए किरदारों के साथ तो नए डायरेक्टर्स के साथ आने को है तैयार। बात की जाए यहां पर कि नए स्टार्स की एंट्री तो होने ही वाली है, लेकिन जो नई जोड़ियां आपके सामने आएंगी इन्हें देखकर के आप भी कहेंगे वाह भाई क्या बात है, क्योंकि इन जोड़ियों का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता था। नई कहानियां, नई जोड़ियां, ट्रेलर, टीजर, हर चीज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। अगेन उससे पहले सुना दे रहा हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से, टीआरपी के बारे में। जहाँ टीवी स्क्रीन की टीआरपी की बात की जाए तो गंगा माई की बेटियां नंबर वन पोजीशन पर कामयाब है, तो वहीं वसुधा सेकंड, अनुपमा फोर्थ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो से टॉप स्लॉट से गिरकर फिफ्थ पोजीशन पर आ गया। जी हाँ, टॉप फाइव की बात करें गंगा माई की बेटियां वसुधा तीसरे नंबर पर तुमसे तुम तक आ पहुंचा है, ये भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी गिरते देख फैंस निराश भी हुए, और अनुपमा की टीआरपी तो पिछले काफी अर्से गिरती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ जगह गंगा माई की बेटियों ने जरूर घेर ली है टीआरपी में नंबर वन पर रहने की। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: उसके आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं वेलकम टू द जंगल के चलो के बारे में, जहाँ रिलीज हुआ और रिलीज होने के साथ ही फैंस नजरें टिकाए बैठे हैं 26 जून की। जी हाँ, क्योंकि 26 जून को कहानी पूरी थिएटर्स में आने वाली है। ट्रेलर में ह्यूमर, जंगल चाउस, एक्शन और मिस्टेकन आइडेंटिटी टाइप कॉमेडी का हाईलाइट दिखाया गया। अक्षय कुमार पूरे बीच शो स्टेलर के रूप में नजर आए। फिल्म को अहमद ने डायरेक्ट किया है और फिरोज नाडेडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। कास्ट लिस्ट काफी बढ़िया, जिसमें कुछ चुनिंदा नाम को जरूर बता देता हूँ। अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, दिशा पचानी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, दलीर पाजी और ना जाने कितने ही बड़ी स्टार कास्ट। तो इंतजार करते हैं 26 जुलाई का कहानी रिलीजिंग का, बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।
1: Yo, boys, I am singing song.

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फॉर मी फॉरएवर। यहाँ अब हम बात करते हैं ऋतिक रोशन के बारे में। ऋतिक रोशन ने हॉलीवुड की रेप्यूटेड मैनेजमेंट प्रोडक्शन कंपनी की अगर बात की जाए एनोनिमस के साथ साइन किया। अभी कोई स्पेसिफिक हॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मूव ने फैंस में इंटरनेशनल डेब्यू की स्पेकुलेशन जरूर बढ़ा दी। कहा जा रहा है ऋतिक का अब इस कंपनी से जुड़ना मतलब कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट की और इशारा तो होता नजर आ रहा है। ऋतिक रोशन क्रिश 4 में कृष्णा मेहरा के रोल रिप्राइज करने वाले हैं, साथ ही वो स्टॉर्म नाम की एक थ्रिलर प्रोडक्शन में भी नजर आएंगे जहां उनका प्रोड्यूसर डेब्यू होने वाला है। आप देखते हैं ऋतिक का ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। फैंस इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। एक तो क्रिश और ऊपर से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रहेगा, इंतजार ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, बाकी चर्चा होती रहेंगे। उससे पहले एक और ट्रैक

0: डांस बसंती
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेके शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं जेलर के सीक्वल के बारे में। जेलर 2 में ऋतिक रोशन के स्पेशल कैमियो की चर्चाएं चल रही हैं और कहा जा रहा कि वो SRK की जगह इस रोल में आए हैं। ऋतिक और रजनीकांत का 40 साल बाद रीयूनियन होगा क्योंकि दोनों पहले भगवान दादा में साथ काम कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि SRK ने स्केड्यूलिंग इश्यूज के कारण कैमियो से एग्जिट किया और फिर मेगल ने ऋतिक को अप्रोच किया। कई जगह ये बात भी है कि ऋतिक के सीन्स चेन्नई में फिल्म किए जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ऋतिक बचपन में रजनीकांत के साथ भगवान दादा में दिखे थे और अब वो फिर से उनके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। चलो एक बेहतरीन कहानियों में से एक है और बात की जाए तो अब फैंस उत्सुक हैं उनके इस कैमियो को लेकर कि ये कैमियो क्या धमाल मचाता नजर आएगा जेलर में।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से। स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे का अंजिया रिलीज 30 जुलाई फाइनल की गई। प्रीमियम फॉर्मेट की बात की जाए एडवांस बुकिंग 17 जून से ओपन हो चुकी है। पहले फिल्म का इंडिया रिलीज 31 जुलाई एक्सपेक्टेड था लेकिन बाद में इसको एक दिन पहले कर दिया गया। जहाँ ये कहानी इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जाने वाली है। बात करें यहाँ पे फॉर्मेट्स की 4DX MX 4D IMAX जैसे फॉर्मेट्स में रिलीज की जाने वाली है तो फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक हैं स्पाइडरमैन की अगली कड़ी देखने के। अगली कड़ी यहाँ पे ब्रांड न्यू डे। अब ये ब्रांड न्यू डे क्या कुछ इंस्पायरिंग कुछ क्रिस्पी कुछ सस्पेंस मेरी कहानी लेकर के आएगा यही देखना चाहते हैं फैंस। फैंस क्या पूरी दुनिया चाहती है बॉस। देखते हैं कहानी में क्या कुछ नया एंगल्स सेट किए गए हैं सबके लिए। इंतजार रहेगा बाकी चर्चा होते रहेंगे। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: तू पीआर है, इस खातिर तेरे तक करया प्यार कोन्या। और सारी दुनिया में जागी टोलिए, तने जाट बरगा मिलेगा यार कोन्या। और मैडम है, दिन में शिफ्टा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या।
1: केवाईसी अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों वक्त हो चला सिनेमा के कैलेंडर का और आज हम बात करेंगे ऐसे स्टार की जिनकी बर्थ एनिवर्सरी और याद करेंगे ऐसे इंडियन सिनेमा के उस कलाकार को जिनकी आवाज सुनते ही एक अलग ही राव महसूस होता था। एक ऐसा एक्टर जिन्होंने विलेन को सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी बना दी। उनकी आंखों का गुस्सा, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि हीरो के सामने भी उनका असर कम नहीं होता था। और जब वो कहते थे मोगैम्बो खुश हुआ तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता था। बात करेंगे इस लेजेंडरी एक्टर के बारे में। बेशक वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में, उनके करेक्टर आज भी हमारे बातों में जिंदा। करेंगे चर्चा लेकिन उससे पहले सुनाया था कुछ खूबसूरत से गाने।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं आज एक ऐसे स्टार की जो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने नाम का लोहा मनवाया, अमरीश पुरी साहब, जान की आज बर्थ एनिवर्सरी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब का सफर काफी संघर्ष भरा रहा। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने नौकरी भी की और साथ ही थिएटर से भी जुड़े रहे। लेजेंडरी थिएटर पर्सनैलिटी सत्यदेव दुबे के साथ काम करते हुए उन्होंने एक्टिंग की गहराइयों को समझा। धीरे धीरे उनकी दमदार आवाज और पर्सनैलिटी ने डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा और फिर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका मानना था कि एक्टर का काम सिर्फ रोल करना नहीं बल्कि कैरेक्टर्स को जीना होता। अमरीश पुरी साहब ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और यादगार कैरेक्टर्स दिए, मिस्टर इंडिया मोगेम्बो, नगीना, भैरवनाथ, विरासत, राजा ठाकुर और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह यानी कि बाबूजी। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट फादर का रोल निभाया और इस इमोशनल कैरेक्टर को भी उतनी ही गहराई से जिया जितना अपने विलन्स को। और मोगेम्बो का कैरेक्टर तो आज भी बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन में शुमार किया जाता। ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले सुनाता हूं एक और खूबसूरत से गाने।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात कर रहे हैं आज अमरीश पुरी साहब के बारे में, जहां अमरीश पुरी साहब ने हॉलीवुड में भी काम किया। इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मूला राम का रोल निभाया, जिसे दुनिया भर में नोटिस किया गया। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी पर्सनालिटी ने विलेन को एक नई पहचान दी, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही शांत और विनम्र इंसान माने जाते थे। आज भी जब बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन्स की बात होती है तो अमरीश पुरी साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मोगैम्बो, भैरवनाथ या बलदेव सिंह, अमरीश पुरी साहब का कौन सा करेक्टर आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है या फिर इनके अलावा कोई और, बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेर बातें। तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। और ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

0: ताकी हो चाकी ताकी ताकी रे जब से तू
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोचिए, एक 14 साल की लड़की जिसे कभी बॉक्सिंग पसंद थी, कभी स्केटिंग, कभी टेनिस, अचानक एक दिन बंदूक उठाती है और कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम रोशन कर देती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पूरा देश उसे असफल मान चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं मनु भाकर की। 18 फरवरी 2002 हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में जन्मी मनु भाकर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उनमें एक चीज कॉमन थी, हर काम में सबसे आगे निकलने की जिद। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने बॉक्सिंग की, मार्शल आर्ट सीखी, स्केटिंग में हिस्सा लिया और टेनिस भी खेला। ऐसा लगता था कि खेल कोई भी हो, मनु उसमें अपनी पहचान बनाई लेंगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्होंने शूटिंग रेंज देखी, पहली बार हाथ में पिस्टल पकड़ी और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग बहुत महंगा खेल माना जाता है, लेकिन मनु के परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पूरा साथ दिया। मनु ने ट्रेनिंग शुरू की और बहुत जल्दी सबको एहसास हो गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। जहां कई खिलाड़ी सालों तक नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, वहीं मनु ने बेहद कम समय में अपने खेल से सभी को बहुत ज्यादा इंप्रेस करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है। और शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में वो भारतीय शूटिंग की सबसे बड़ी स्टार बनने वाली है। लेकिन स्टार बनने से पहले उन्हें दुनिया को साबित करना था कि वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि एक चैंपियन है। और कैसे बनी वो चैंपियन करेंगे इसके बारे में बात, कैसे वो पहुंची इंटरनेशनल स्टेज तक, सब कुछ करेंगे बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले, रहेगा तो गुलाम ही।

जिस उम्र में ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल असाइनमेंट्स और एग्जाम की टेंशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में एक इंडियन गर्ल इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। साल था 2018। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं मनु भाकर की। मनु भाकर नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करना था। मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे थे। पूरे इंडिया की नजरें इस यंग शूटर पर टिकी हुई थी। प्रेशर बहुत था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा थी, लेकिन मनु ने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि कंपटीशन के रिकॉर्ड्स तक हिल गए। और फिर आया वो मोमेंट, स्कोर अनाउंस हुआ और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूज चैनल्स पर उनका नाम छा गया, लेकिन मनु यहीं नहीं रुकी। इसी साल उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता और दुनिया के टॉप शूटर्स को चैलेंज कर दिया। अब उन्हें इंडियन शूटिंग का फ्यूचर स्टार कहा जाने लगा। हर तरफ एक ही डिस्कशन था, क्या ये लड़की ओलंपिक मेडल भी ला सकती है? मनु का कॉन्फिडेंस पीक पर था। वो किसी बड़े नाम से नहीं डरती थी। टारगेट चाहे कितना भी टफ हो, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था और वो है परफेक्ट शॉट। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती, कभी कभी एक ही दिन सब कुछ बदल देता है। और मनु की लाइफ में भी वो एक दिन आने ही वाला था, एक ऐसा दिन जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। कौन सा था वो दिन, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: पूछा जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ़ देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी सालों की मेहनत एक ही पल में बिखर जाती है, और मनु बाकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब पूरा देश उनसे मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। साल था 2021, टोक्यो ओलंपिक्स, हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना, और मनु भाकर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मेडल कंटेंडर्स में से एक मानी जा रही थी। करोड़ों इंडियंस को उनसे मेडल की उम्मीद थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मैच के टाइम पर उनकी पिस्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ओलंपिक्स जैसे स्टेज पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। समय निकलता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और मनु का रिदम टूट गया। रिजल्ट आया और वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जो एथलीट मेडल फेवरेट थी वो पोडियम से बहुत दूर रह गई। सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, लोग क्वेश्चंस पूछने लगे, कुछ लोगों ने तो उनकी कैपेबिलिटी पर भी डाउट करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक यंग एथलीट के दिल पर क्या बीत रही थी। ओलंपिक से खाली हाथ लौटना उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। यह सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, यह उन सपनों का टूटना था जो उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हार को अपनी कमबैक स्टोरी बना देते हैं। मनु ने दूसरा रास्ता चुना, और आगे कैसे उन्होंने दुनिया के मन से डाउट को खत्म किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

सबसे मुश्किल बैटल कभी कभी ग्राउंड पर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और टोक्यो के बाद मनु भाकर को वही बैटल जीतनी थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मनु के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिसअपॉइंटमेंट में डूब जाती या फिर वापस उठकर दुनिया को जवाब देती। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हुई, गलतियों का एनालिसिस हुआ, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम हुआ। हर दिन एक नए मिशन की तरह था। उनका गोल बहुत सिंपल था, वापस आना और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना। अगले कुछ सालों में मनु ने लगातार कॉम्पिटिशन खेले, हर टूर्नामेंट उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और स्ट्रांग बनाता गया। अब वो सिर्फ टैलेंटेड शूटर नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट बन चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। क्रिटिक्स धीरे धीरे चुप होने लगे और सपोर्टर्स को लगने लगा कि मनु की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आनी बाकी है। अब सारी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर थी। एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या मनु भाकर अपनी अधूरी ओलंपिक स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगी? जवाब जल्दी मिलने वाला था और वो जवाब हिस्ट्री बनाने वाला था। कैसे, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मम्मा मम्मा, आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा, बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं, उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा, जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते, उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है। तो मम्मा, हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं, उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

0: जिस एथलीट को टोक्यो के बाद लोगों ने अंडरएस्टिमेट कर दिया था, उसने पेरिस में ऐसा कमबैक किया कि पूरा देश खड़े होकर तालियां बजाने लगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक्स 2024, मनु भाकर अब पहली वाली यंग प्रोडिजी नहीं थी, अब वो स्ट्रगल, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुकी थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, प्रेशर फिर से था, एक्सपेक्टेशंस फिर से थी, लेकिन इस बार मनु मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार थी। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीत लिया। पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एथलीट बन गई जो कि एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल्स जीतने में सक्सेसफुल रही। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये टोक्यो के दर्द का जवाब था। ये उन सब लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने अंडरएस्टिमेट किया था, और सबसे बड़ा जवाब था उनके खुद के लिए। आज मनु भाकर की कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है। कभी कभी जिंदगी आपको गिरा देती है, कभी कभी सपने टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो वही टूटे हुए सपने एक दिन हिस्ट्री बन सकते हैं। और इसीलिए मनु भाकर एक शूटर नहीं, एक कमबैक स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है, और एक नाम है जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, you are not ready for this.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है बेसब्रियां और मुझे पता है कि आप भी बहुत ज्यादा बेसब्र होंगे मुझसे मिलने के लिए, ताकि एक और नए बिजनेस टाइकून की कहानी आप तक मैं पहुंचा पाऊं। खैर, इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूं गीत। बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी आज एक और ऐसे ही बिजनेस टाइकून की कहानी लेकर आई हूं। और कहते हैं कि दिल का जो रास्ता होता है वो पेट से होकर गुजरता है, और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो यादों का हिस्सा बन जाते हैं, क्यों है ना। बचपन से लेकर आज तक, कभी स्कूल से लौटते हुए, कभी ट्रेन के सफर में, कभी त्योहार की खरीदारी के बीच, कुछ चीजें हमेशा साथ रही हैं। और ये शो उन कहानियों के लिए है जो हम रोज देखते हैं लेकिन कभी ध्यान से सुनते नहीं। यहाँ हम बड़ी बड़ी बिजनेस टर्म्स की बात नहीं करते, यहाँ बात होती है छोटी शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ते काम की, और उस सोच की जो किसी ब्रांड को सालों तक जिंदा रखती है। आज का एपिसोड एक ऐसे नाम पर है जिसे आपने बचपन से सुना है, जिसका स्वाद आपने बिना सोचे समझे अपनाया है। ये कोई नया नाम नहीं है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब न पैकेजिंग का जोर था न एडवर्टाइजिंग का शोर। एक छोटी सी दुकान थी, कुछ कच्चा माल था और एक इंसान था जो अपने हाथों से कुछ बनाता था, और आज वही नाम हर शहर में है, हर घर में है। बड़ी कंपनीज, बड़े डिस्कशंस और बड़े फैसलों की बातें हो रही हैं उस चीज को लेकर, लेकिन बिजनेस अनप्लग्ड में हम उन बातों से शुरुआत नहीं करते जो आज चल रही हैं। हम वहां जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, जब ये नाम सिर्फ एक दुकान की पहचान था और जब कोई ये नहीं जानता था कि आने वाले सालों में ये कितना बड़ा नाम होने वाला है। और ये नाम क्या है, किस इंसान ने इस कहानी की पहली नींव रखी, ये मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन गाना सुन लेते हैं पहले, गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत हूँ और अभी हम एक ऐसे नाम से शुरुआत करने वाले हैं जिसकी शुरुआत सच में बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। अब वक्त है उस नाम को लेने का जिसे आप बिना सोचे समझे दुकान से उठा लेते हैं और घर जाकर इत्मीनान से खाते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया। आज हम बात करने वाले हैं हल्दीराम्स की। हाँ, वही हल्दीराम जिसकी भुजिया, नमकीन और स्वीट्स इंडिया के हर कोने में मिल जाते हैं। लेकिन हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड तो नहीं है, ये एक इंसान से शुरू हुई कहानी है। इस ब्रांड की नींव रखी थी गंगा बिशन अग्रवाल ने, बीकानेर के रहने वाले और पढ़ाई में सिर्फ 8वीं पास। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हल्दीराम कोई सोचा समझा ब्रांड नेम नहीं था। गंगा बिशन की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम बुलाती थी और उन्हें जब अपनी नमकीन का नाम रखना था तो उन्होंने वही नाम रख दिया। न फोकस ग्रुप, न ब्रांडिंग एजेंसी, बस घर का नाम दुकान का नाम बन गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन पूरे देश में पहचाना जाएगा। उस टाइम हल्दीराम न चेन था न फैक्ट्री, बस एक छोटी सी दुकान जहां भुजिया और नमकीन खुद बनती थी, खुद बेची जाती थी। आज हल्दीराम एक ऐसा नाम है जो जेनरेशंस को जोड़ता है, दादी नानी के जमाने से आज के बच्चों तक। लेकिन ये जो ब्रांड इमेज है ये एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे एक लंबा सफर है। बचपन से शुरू हुआ, सीखने से भरा हुआ और एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ। पर गंगा बिशन अग्रवाल का बचपन कैसा था, उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा था, ये हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। बात कर रहे हैं हम हल्दीराम्स की। मैं आपके साथ गीत हूँ, और जिसने हल्दीराम का फाउंडेशन रखा उनका नाम था गंगा बिशन अग्रवाल, बीकानेर के रहने वाले और पढ़ाई में सिर्फ 8वीं पास। लेकिन याद रखिए, डिग्री कम हो सकती थी पर स्किल और क्यूरियोसिटी बचपन से ही इनमें थी। गंगा बिशन जो अपने दादाजी और परिवार से सीखते थे, इनके घर में हमेशा हाथ से बनी भुजिया और नमकीन रहती थी। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, मसालों की सही मात्रा, आज की पहचान और सारी चीजें इन्होंने घर के माहौल में देखी, महसूस की और धीरे धीरे समझी। उनके लिए सबसे बड़ी सीख सिर्फ बनाने की नहीं थी बल्कि टेस्ट में कंसिस्टेंसी लाने की थी। हर बार वही स्वाद बने जो लोग पसंद करें। बचपन से ही इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, कौन सा तरीका काम करता है कौन सा नहीं, और यही क्यूरियोसिटी उनके पूरे करियर की नींव बन गई। वो बस रेसिपीज को कॉपी नहीं करते थे, हर चीज में इन्होंने अपने तरीके और इम्प्रूवमेंट्स डाले। इन्होंने एक चीज नोट की कि राजस्थान के जो लोग हैं वो मोठ दाल को बहुत पसंद करते हैं, तो इन्होंने अपनी नमकीन में मोठ दाल का यूज किया। बेसन प्लस मोठ दाल से एक बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी भुजिया बनके तैयार हुई। लेकिन इससे पहले इनकी जो भुजिया थी वो क्रिस्पी नहीं होती थी, थोड़ी सी सॉफ्ट। लेकिन इन्होंने देखा कि लोगों को थोड़ा क्रिस्पीनेस भी बहुत पसंद है, इसीलिए इन्होंने भुजिया को पतला और क्रिस्पी बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। यही एक्सपेरिमेंटेशन छोटे से घर के किचन से एक छोटी सी दुकान तक पहुंचा, और ये वही टाइम था जब इन्होंने समझा कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है बल्कि किसी चीज को परफेक्ट करने का नाम है। लेकिन अब सवाल ये था, ये भुजिया और नमकीन बीकानेर से बाहर कैसे पहुँचे और कौन से छोटे कदम ने इन्हें देश भर में पहुँचाया, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

गाना है फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जब गंगा बिशन अग्रवाल ने अपने स्किल और एक्सपेरिमेंट को असल दुनिया में आजमाया। बचपन और लर्निंग का फेज खत्म हुआ और अब एक छोटी सी दुकान थी जहां भुजिया और नमकीन बनती थी और खुद ही बिकती थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि टेस्ट तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। यहीं इन्होंने पहली बड़ी बिजनेस सोच दिखाई। गंगा बिशन जी ने भुजिया का नाम रखा दंगर सेव, और दंगर सेव के नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस टाइम पे दंगर महाराज जो राजस्थान के महाराज थे उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी, और इनको एक ऐसी चीज बनानी थी या एक ऐसा नाम रखना था जो लोग रिस्पेक्ट के साथ खाएं। इसीलिए इन्होंने अपनी नमकीन का नाम, अपनी सेव का नाम रख दिया दंगर सेव, बीकानेर के महाराजा दंगर सिंह के नाम पर। तो अब सुनिए ये प्रोडक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। जब प्रोडक्ट का नाम जुड़ता है किसी पहचाने हुए नाम से तो लोग उसे केवल एक स्नैक के रूप में नहीं देखते, उन्हें लगता है ये स्पेशल है और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और यही ब्रांडिंग का पहला अनऑफिशियल लेसन था जो इन्होंने बिना किसी मार्केटिंग एजेंसी के सीख लिया था। पहले दिन भुजिया की कीमत थी सिर्फ 5 पैसे प्रति किलो, लेकिन डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग इसके क्रिस्पी और चटपटे टेस्ट को पसंद करने लगे। और यही वो मोमेंट था जब इन्होंने समझा कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्लस स्मार्ट नेमिंग इज इक्वल टू ग्रेजुअल ग्रोथ। लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। बीकानेर छोटा शहर था, मार्केट का रीच लिमिटेड था, प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन ज्यादा लोग इसे नहीं जानते थे। और गंगा बिशन जी ने सोचा अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा। सोल्यूशन आया खुद ट्रेवल करने का। एक शादी में कोलकाता गए अपनी भुजिया साथ लेकर। वहाँ के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने इस भुजिया को इतना पसंद किया कि इन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। और यही वो पॉइंट था जब इन्होंने पहली बार सोचा शॉप खोलना होगा सिर्फ बीकानेर नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी। तो कलकत्ता में पहली ब्रांच खुली, बाद में नागपुर और फिर दिल्ली तक एक्सपेंशन हुआ। लेकिन एक्सपेंशन का मतलब था हर्डल, सबसे पहला हर्डल लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फ्रेश कैसे रहेगा। दूसरा हर्डल पीपल मैनेजमेंट, वर्क कल्चर सेट करना और क्वालिटी मेंटेन करना। तीसरा हर्डल कंपटीशन। छोटे छोटे लोकल शॉप्स भी थे, लोगों की आदत बदलना आसान नहीं था। लेकिन गंगा बिशन ने धीरे धीरे हर हर्डल का सलूशन खुद ढूंढा। दे ऑब्जर्व, ट्राइड, एक्सपेरिमेंटेड और फिर रिपीट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब करने के लिए उन्हें कोई फॉर्मल बिजनेस प्लान या डिग्री नहीं मिली थी, बस एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग, बचपन से सीखी स्किल्स। यही मेहनत थी, यही प्लानिंग और यही क्रिएटिविटी थी जो हल्दीराम को लोकल शॉप से रीजनल ब्रांड तक ले गई। लेकिन अब एक नया चैलेंज आया। बिजनेस बढ़ रहा था लेकिन फैमिली इन्वॉल्वमेंट और डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। अब ये डिस्प्यूट कहां तक इस ब्रांड को ले जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

गाना है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। अब हम बात करेंगे उस फेज की जब हल्दीराम्स ने सिर्फ बीकानेर या कोलकाता तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। बिजनेस बढ़ रहा था, स्टोर्स खुल गए थे, प्रोडक्ट का टेस्ट लोगों को इतना पसंद आ रहा था कि हर शहर में इसकी डिमांड बढ़ रही थी। नागपुर में ब्रांच, दिल्ली में ब्रांच, और धीरे धीरे हल्दीराम का नाम सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि नेशनल ब्रांड बन गया। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ चैलेंजेस भी बड़े होते गए। सबसे बड़ा चैलेंज आया फैमिली डिस्प्यूट्स का। गंगा बिशन अग्रवाल के 3 बेटे थे, शादी के बाद घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, बीवियों ने भी फैमिली डिसीजंस में हाथ डाला जो कभी बिजनेस डिसीजंस में क्लैश करते थे। बिगर पिक्चर ये थी कि सबको अपने तरीके से बिजनेस चलाना था, लेकिन कभी कभी व्यूज क्लैश होने लगे। सत्यनारायण उनके बेटे ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता और भाई से अलग होकर अपने लिए अलग बात बनाएगा, और इसी के चलते इन्होंने हल्दीराम्स एंड सन नाम से अलग दुकान शुरू कर दी, और इसी वजह से बिजनेस में 3 हिस्सों का बंटवारा हुआ। कलकत्ता ब्रांच ईस्ट एंड साउथ इंडिया हैंडल करता था, नागपुर ब्रांच वेस्ट इंडिया हैंडल करता था, दिल्ली ब्रांच नॉर्थ इंडिया हैंडल करता था। इस बंटवारे का मकसद सिर्फ इतना था कि कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सके, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस में अलग अलग मैनेजमेंट चैलेंजेस भी आए। इन डिस्प्यूट्स और स्प्लिट्स के बावजूद हल्दीराम ने अपना ब्रांड बनाए रखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, कस्टमर लॉयल्टी बनाए रखना, और हर नई ब्रांच में टेस्ट रेप्लिकेट करना। और सिर्फ इंटरनल डिस्प्यूट ही नहीं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे। सप्लाई चेन मेंटेन करना, स्टाफ ट्रेन करना, फ्रेशनेस एंड क्वालिटी इंश्योर करना, मार्केट एक्सपेंशन में हर्डल्स, लेकिन हर चैलेंजेस ने ब्रांड को और भी स्ट्रांग बनाया। आज हल्दीराम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 80 प्लस कंट्रीज में मौजूद है, और टर्नओवर की बात करें तो लगभग 9000 करोड़ प्लस। रेस्टोरेंट, पैकेज फूड, स्वीट, स्नैक्स, हर कैटेगरी में प्रेजेंस। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है कि सक्सेस की इस कहानी में फैमिली डिस्प्यूट्स और स्ट्रगल की भूमिका बहुत बड़ी थी। बीवियां जो घर के अंदर थीं, इन्होंने भी बिजनेस में इम्पैक्ट डाला। उनकी सजेशंस, कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स और इंटरनल नेगोशिएशंस ने ब्रांड के ग्रोथ स्ट्रेटेजी को शेप दिया। यही वो रियल स्ट्रगल है जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं दिखती, जो एक्सपीरियंस, पेशेंस, नेगोशिएशन और स्मार्ट डिसीजन का कॉम्बिनेशन बनता है। इतने सारे हर्डल, डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस के बावजूद हल्दीराम ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। अब अगले गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत हूँ। हम बात कर रहे हैं हल्दीराम्स की। हल्दीराम की ये कहानी हमें बताती है कि बिजनेस सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता, काम समझने से चलता है। छोटी शुरुआत होना कोई कमी नहीं है, कमी तब होती है जब सीखना बंद हो जाए। टेस्ट हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस, अगर लोग इसे अपनाते हैं तो रास्ता अपने आप बनता है। और सबसे जरूरी बात, बिजनेस में मुश्किलें आएंगी, डिस्प्यूट्स होंगे, पर कंसिस्टेंसी छोड़ी नहीं जाती है। बिजनेस अनप्लग्ड का आज का एपिसोड यही याद दिलाता है, काम करते रहो और काम को बोलने दो। मैं हूँ आरजे गीत और मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

घर के किसी कोने में रखा एक मर्तबान, जो खोला जाए तो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि पूरी गर्मियां साथ ले आता है। 89.6 FM पर आज हम बात करेंगे उस चीज की जो खाने के साथ कम, यादों के साथ ज्यादा परोसी जाती है। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे अंजलि और शो लेकर आ गई हूं कल्चर कारवा, जहां आज कल्चर कारवा की कहानी ही मेरी अचार के चारों। ये मीठी खट्टी सी कहानी बहुत कुछ कह जाती है। तो बात करें अचार की, पहले जान लेते हैं इसका मतलब। अचार का मतलब आखिर होता क्या है? अचार कोई साइड डिश नहीं होता दोस्तों, ये एक सोच होती है कल के लिए आज बचाने की सोच। वो कहा है कि जो वक्त को रोक ले वो शीशे का डब्बा नहीं अचार होता है। अचार का मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं, ये प्रिजर्वेशन, पेशेंस और प्लानिंग, इन सभी का एक देसी तरीका था। अब बात कर ही रहे हैं अचार की, अचार का मतलब भी जान लिया, तो आइए अब चलते हैं ये जानने कि कहां से आया अचार। कहा जाता है कि जब फ्रिज नहीं थे, जब फ्रीजर सिर्फ सपना था, तब सवाल ये था फल और सब्जी सालों तक कैसे चलेंगे। बस तभी से बनी ये हिस्ट्री। हिस्ट्री बताती है कि अचार ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3000 साल पुराना है, यानी कि मेसोपोटामिया, पर्शिया और इंडस वैली तक इसके ट्रेसेस मिलते हैं। संस्कृत टेक्स्ट में तो अचारिता शब्द मिलता है, मतलब जो संभाल कर रखा जाए वो है अचार। इंडिया ने सिर्फ अचार को बचाया नहीं बल्कि रस से भर दिया और अपने तरीके से अचार को एक नया ट्विस्ट दे दिया। आखिर इस ट्विस्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

कल्चर कारवा की आज की कहानी घूम रही है खट्टे मीठे अचार की तरफ। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और कहानियों के पिटारे में से आज मैं लेकर आई हूँ अचार। अब अचार का नाम अचार क्यों पड़ा, इस बारे में तो हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन इंडिया ने क्या बदला, बारी है ये जानने की। तो यहीं से शुरू होता है इंडियंस का अपना तरीका। इंडिया ने बोला प्रिजर्व तो ठीक है, पर बिना टेस्ट के क्यों करना, क्योंकि हम इंडियंस हर चीज में चटकारे ढूंढते हैं। और बस फिर वहीं से आया सरसों का तेल, हल्दी, हींग, लाल मिर्च और नमक। वो कहा है कि जितना वक्त लगता है अचार पकने में, उतना ही वक्त लगता है रिश्तों को समझने में। और अचार के लिए कहा जाता है ये स्लो फूड है, यानी कि वक्त मांगता है, लेकिन जब बनता है ना तो अच्छा लगता है। अब बात कर ही रहे हैं अचार की, इंडिया तक आया और अपना रूप भी बदल लिया, लेकिन आपको पता है हर रीजन का

अलग अलग रंग हैं, वैसे ही अचार के स्वाद भी इंडिया में अलग अलग मिलेंगे। अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं तो आम, गाजर, गोभी, तीखा और तेलिया सा अचार। वहीं अगर राजस्थान की तरफ मुड़े तो केर सांगरी, कुमत, पानी की कमी का जवाब। और अगर साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो नींबू, गोनगुरु, टेंगी और शाप अचार। और वहीं अगर थोड़ी दूर ईस्ट की तरफ जाएं तो कसुंदी बेस, मस्टर्ड हैवी अचार। नॉर्थ ईस्ट की भी बात कुछ कम नहीं, बैम्बू शूट जैसे पीकल्स मिलते हैं। तो भाई कहा जाता है कि अचार यहाँ सिर्फ एक खाना नहीं, ज्योग्राफी का जवाब है। अचार की ज्योग्राफी तो जान ली, लेकिन अब वापस आकर बात करेंगे कि घर की रसोई में अचार कितना महकता है। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी सोचा है कि अचार ज्यादातर माँ और दादी के हाथों से ही क्यों बनाया जाता है? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं खट्टे मीठे तीखे से अचार के बारे में। अचार के बारे में मैंने अभी आपसे एक सवाल किया कि ज्यादातर अचार माँ और दादी के हाथों से ही क्यों बनता है, क्योंकि अचार में रेसिपी कम और अनुभव ज्यादा डालना पड़ता है। मिर्च ज्यादा लग रही है ये लिखा नहीं होता, महसूस किया जाता है और ये अनुभव मिलता है माँ और दादी के हाथों में। वो कहा है कि माँ के हाथ का अचार रेसिपी से नहीं नीयत से बनता है, शायद तभी इतना लाजवाब होता है। अचार के लिए सिर्फ अनुभव नहीं, समय भी बेहद जरूरी होता है। वो कहा है कि अचार तुरंत नहीं बनता और इसीलिए खास होता है। एक महीना धूप, डेली उलट पुलट करना इस अचार को और देखना, साथ ही संभाल कर रखना। ये हमें सिखाता है सब चीजें जल्दी नहीं होती, कुछ चीजों में समय लगता है और वक्त हमेशा बेहतर देता है। कहा है कि आज की फास्ट लाइफ में अचार एक रिमाइंडर है, स्लो रहना भी बेहद जरूरी है। अचार के बनने के पीछे का प्रोसेस तो जान लिया, अब बात करेंगे इससे जुड़े हुए साइंस, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कहा जाता है कि अचार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पूरा का पूरा साइंस है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। जान रहे हैं अचार का पूरा कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री से लेके इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन तक। कहा जाता है कि अचार सिर्फ परंपरा नहीं पूरा का पूरा साइंस छुपा है इसके पीछे। बात करें तेल की तो तेल ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, नमक की बात की जाए तो नमक बैक्टीरिया को रोकता है, और अगर हल्दी की बात की जाए तो हल्दी एंटीमाइक्रोबियल है। इसीलिए कभी सोचा है कि आज का बना हुआ अचार सालों तक कैसे चल जाता है? इसके पीछे की जो साइंस है ये पूरी तरह से देसी है, बिना लैब कोट के, और साइंस के पीछे का यही तरीका प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब बात कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि आज के समय में ये अचार मर्तबान से सीधा मार्केट तक कैसे आया। आज अचार ग्लास जार से निकलकर सुपर मार्केट्स तक आ गया है। फिर चाहे बात की जाए ऑर्गेनिक अचार, फ्यूजन फ्लेवर्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी, पर सच तो ये है कि मार्केट का अचार कभी घर वाले अचार जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि उसमें यादें नहीं होती, होता है ढेर सारा नमक। वो कहा है कि अचार सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये वक्त को संभाल

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

मंडे की शाम, और ये शाम ना हमेशा थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, सुबह अच्छी नहीं होती मंडे की, ये मैं मानता हूँ दिल से, मगर शाम अच्छी हो जाती है, और उसको और भी ज़्यादा अच्छे करने के लिए मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ। रेडियो महारानी पर स्वागत है सभी का। कैसे हो आप सब? देखो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना, धूप वाला, गर्मी अच्छी वाली गर्मी हो रही है, बट चिंता मत करो, बस कुछ दिन की मेहमान है ये गर्मी, क्योंकि मानसून दस्तक देने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं मानसून गायब हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं मानसून वापस आ रहा है, और एल नीनो की वजह से ये पूरी की पूरी दिक्कत आई थी। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और अगले 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। अब देखो, जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं कि पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम है, और उसमें खूब सारी बातें होने वाली है, गाने भी बजेंगे, और अगर फरीदाबाद में आप लोगों को किसी भी चीज से कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएं। हमारा नंबर है जी 9654896896, ये सिंपल सा नंबर है, फ्रीक्वेंसी हमारी 89.6, तो वही नंबर है 9654896896। इसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर भी हम लोग मिल जाएंगे बहुत इजीली। और हाँ, कल का मैच देखा आप लोगों ने? इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, सूर्यवंशी की बैटिंग, करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, एंड एक बात का तो वादा मैं करता हूँ आप लोगों से कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाएगा, कितनी तेज़ी से निकलेगा, ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा। करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर इस गाने के बाद अजूल और सिरा मिक्स मैशअप गुरु रंधावा की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वायरल चल रहा है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं कोई रील वायरल नहीं चल रही, गाना वायरल नहीं चल रहा, मगर वायरल फीवर चल रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और 5:23, माफ कीजिए 24 मिनट हो गए हैं मेरी स्टूडियो क्लॉक में। और इसी के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो वायरल हो रहा है, ये एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मियों में कभी ऐसा होता नहीं था और कल का जो ये मौसम था, मुझे लग रहा है इस वजह से हो सकता है, क्योंकि देखो बार बार बारिश आ रही है, फिर उसके बाद धूप निकल जा रही है, फिर बारिश आ रही है, फिर धूप निकल जा रही है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि लोगों को सर्द गर्म फील हो रहा है एक साथ, और फिर उसकी वजह से बुखार आ रहा है। हो सकता है आपके ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको बुखार हो रखा है इस टाइम, और ये जो वायरल होता है ना, ये ना फैलता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं अभी पहले बात करूँगा कल के मौसम की, मतलब जो कल गया है उसके मौसम की। क्या अमेजिंग मौसम था ना संडे की सुबह सुबह, सब जगह सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल, बादल ही बादल। फिर दोपहर में होते हुए क्या हुआ, दोपहर में तो धूप आ गई, फिर शाम के वक्त ऐसा लगा आंधी चल रही है, मगर वो आंधी नहीं थी, वो तेज़ हवाएं थी और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर बारिश की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों को बारिश मिल जाए, ऑल दो गूगल भैया तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड गर्मी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो गर्मी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मगर इसी के साथ साथ सैटरडे या फिर संडे को आप लोगों को हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, बस बारिश का वेट करेंगे, और इसी के साथ साथ कल वाले मौसम का फिर से इंतज़ार कर लेंगे, और गाने भी चलेंगे आप लोगों के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर। और हाँ, इसी के साथ साथ मॉनसून गायब हो गया ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, कहाँ गायब हो गया, पकड़ के लेकर आएंगे उसको फरीदाबाद में, और अच्छे से बारिश होगी इस बार। मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाना बाय, नहीं नहीं बाय बी वाई ई बाय बाय जत्ते भारद्वाज, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। साल 2022 का ट्रेंडिंग गाना था ये, सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Oh, so-

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

जो ऑफिशियल मॉनसून है ना, कहा जा रहा है कि वो 25 तारीख तक आ जाएगा, मगर ऐसा तो मुझे तो कहीं भी नहीं लग रहा, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ धूप, गर्मी गर्मी गर्मी धूप, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। काफी सारे लोग हैं जिनको बारिश पसंद होती है मेरी तरह, और काफी सारे लोग हैं जो बारिश से परेशान हो जाते हैं, और फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई तू बाइक या स्कूटी पे चल के देख, तुझे तब पता चलेगा कि बारिश क्या चीज़ होती है। हाँ मैं स्कूटी पे ही चलता हूँ, मुझे पता है बारिश क्या चीज़ होती है, और अगर बारिश हो रही होती है तो फिर मैं घर से बाहर नहीं निकलता, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कैब कर लूँ, उसके अलावा मैं कर ही कह सकता हूँ। चलिए मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, देखो मानसून को कहा जा रहा है कि डिले हो गया है, और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नाम है, तो IMD बोल देंगे हम लोग। IMD की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और वो बोल रहे हैं कि 25 से 30 जून के बीच में मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा, और दिल्ली कितनी दूर है, साइड में तो है दिल्ली, मगर फिर उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि कुछ स्लो हो रहा है मानसून, और स्लो होते होते क्या होगा, स्लो होते होते यही होगा कि ये डिले हो गया है और ये जुलाई 6 से जुलाई 10 तारीख के बीच तक पहुँचेगा, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। बट हम लोग, मैं कहूँगा कि प्री मानसून होता है ना, प्री मानसून शावर होता है, ये तो जल्दी आ जाएंगे ना, तो ये आ जाएं पहले तो अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा ठंडक सी मिल जाएगी, गर्मी से राहत मिल जाएगी, बस यही तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मानसून से। खैर आप लोग ये बताइए मुझे कि आप लोगों को मानसून पसंद है या फिर नहीं, या फिर मैं बोलूँ बारिश पसंद है या फिर नहीं, क्योंकि बारिश से कोई कैसे नफरत कर सकता है, इतनी तो प्यारी होती है बारिश, बारिश आते ही कितना अच्छा मन खिलखिला जाता है, पौधे खिलखिला जाते हैं, और उसके बाद हमारे मन में भी स्पार्क्स उठते हैं हाँ कुछ खाने का। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, इस गाने को सुनने के बाद भी आपके मन में स्पार्क्स उठेंगे, और ये गाने का नाम है ब्राउन मंडे, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

पे पत्थर ज़रूर लगे हैं, और ये हुआ है हरियाणा में ही। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया था मोबाइल फ़ोन से, और मोबाइल फ़ोन एक तरह की लत ही है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जस्ट बिकॉज वो गाड़ी चलाते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पहली चीज़ ये तो करनी नहीं है। फिर आते हैं इस बात पर जो हरियाणा के एक गांव का नाम है सुखपुरी, और यहाँ पर लोगों के मन में सुख नहीं था इसलिए उन्होंने अपने फ़ोन तोड़ दिए। करीब करीब 55 फोन ईंट और पत्थर से तोड़कर इन्होंने छुटकारा पाने का आगाज़ किया है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता इन्होंने स्मार्टफोन्स तोड़े, छोटे वाले फ़ोन नहीं तोड़े। अब यहाँ पर सवाल ये है कि शायद ये लोग इनको बेच भी तो सकते थे ना। मतलब 55 फोन अगर बेचते और एक एवरेज लगा लो कि एक फ़ोन 10,000 रुपये का बिक जाता, मान लेते हैं हम एवरेज लगा लेते क्योंकि अच्छे अच्छे फ़ोन भी थे उसमें बहुत सारे, तो एवरेज लगा रहे 10,000 रुपये का एक फ़ोन बिकता है तो करीब करीब कितना हो जाता है, 5,00,000 रुपये तो मिल ही जाते ना आई गेस। चलिए खैर जो भी है, अब जो भी हुआ इन लोगों ने फ़ोन तोड़ दिए, और गांव वालों ने बताया कि देखो स्मार्टफोन के कारण ना इनका काम काज नहीं हो पा रहा था, और जो सामाजिक जीवन है सोशल लाइफ जैसे कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने सब ने दोबारा से कीपैड फ़ोन शुरू कर दिया है। मगर मेरे मन में सवाल ये है, सवाल तो वही रहेगा, और वो ये है कि अब ये सुबह सुबह वो फ़ोटो कैसे भेजेंगे जिसमें एक चाय का कप होता है उसमें धुआं निकल रहा होता है ऊपर से लिखा होता है गुड मॉर्निंग और साइड में बहुत सारे फूल होते हैं, वो सब फोटोज़ कैसी भेजी जाएगी अब। चलिए ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, गाने का नाम है वो, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

मैंने अपने शो की शुरुआत में एक बात बोली थी और जो लोग अभी जुड़े हैं उन लोगों को बता देता हूँ वो क्या बात थी। मैंने कहा था कि टाइम बहुत तेजी से निकलेगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और वैसा ही हो रहा है कि टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा है। 6:09 मेरी स्टूडियो क्लॉक में और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, और वो ये है कि टाइम जितनी तेजी से बीत रहा है ना, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जून खत्म होने वाला है। रियलाइज हो रहा है कि कितना ज्यादा टाइम बीत रहा है। और बता दूं आपको, 2 मिनट का जनवरी आया था, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का जनवरी। कब आया कब चला गया पता नहीं चला। 1 मिनट में फरवरी खत्म हो गया था, फिर उसके बाद 300 साल का मार्च था। ये मार्च वॉज नेवर एंडिंग एंड आई वॉज लविंग इट। मैं चाहता हूँ फिर से एक और ऐसा महीना आ जाए जो कि खत्म ही ना हो, क्योंकि मार्च में ही हमने होली भी देखी, न जाने क्या क्या चीज़ें देखी, वर्ल्ड कप देखा, फिर उसके बाद और भी चीज़ें, नवरात्रे भी थे उसी में। तो खैर इन सब चीज़ों को भी साइड में रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या आया, 5 सेकंड का अप्रैल, 2 सेकंड का मई, क्योंकि अप्रैल और मई ऐसे बीते हैं जैसे कि कहते ना लाइट सू, बहुत तेज़ी से बीतते हैं। और मई का तो मुझे लग रहा है भाई क्या हुआ, और जून तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं 2 जून की रोटी पे जोक्स बना रहा था, और आज देख लीजिए आप लोग 22 जून आ चुकी है, 20 दिन निकल गए हैं पता नहीं चला। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सीधे के सीधे कल ही क्या आ जाएगा, 1 जुलाई। पता नहीं चलेगा भाई टाइम कितनी तेज़ी से बीतेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से स्मार्टफोन आया ना हमारी ज़िंदगी में, तब से ये टाइम और भी ज़्यादा तेज़ी से बीतने लगा है। आपका क्या कहना है इस पर बताइएगा ज़रूर। रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहीं पर आके मैसेज कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

आप लोगों ने कपिल शर्मा का शो तो देखा ही होगा, और उसमें एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स बनकर आता है कौन, मिस्टर सुनील ग्रोवर। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जरा सुनिए ध्यान से। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। पुराना नॉस्टैल्जिक गाना था ये गलासी, और अब जो बात है सुनील ग्रोवर की वो ये है कि एक वीडियो डाली है इन्होंने, और वीडियो में दिख रहे हैं ये कि रोड पे किनारे पे लेटे हुए हैं। फिर जब ध्यान से देखा तो वो रोड नहीं था, वो था एक घाट, और घाट फिर देखा और भी ज़्यादा घूर के तो पता चला कि ये तो ऋषिकेश में लेटे हुए हैं घाट पे, और एक सिंपल सी चादर बिछाकर फुटपाथ पे सो रहे हैं, और त्रिवेणी घाट का वीडियो बताया जा रहा है वैसे से। तो इसमें लोग यही कह रहे हैं देखो यार कितना सिंपल इंसान है। और मैंने इनका पूरा का पूरा सब कुछ जो पोस्ट थे सारे देखे, तो सारे पोस्ट में यही दिखा कि ये इंसान एक दिन हैंडपम्प के नीचे बैठ के अपने कपड़े धो रहा था, और एक दिन अब ये वीडियो आ गई जिसमें ये त्रिवेणी घाट पे आराम से सो रहे हैं बाकी लोगों के साथ। और ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं था, मैंने क्योंकि इनके बहुत सारे पोस्ट और भी देखे हैं तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। एंड सेम टू सेम ऐसे ही एक एक्टर हैं जिनका नाम है संजय मिश्रा, वो भी यही सब करते हैं। वो पहाड़ों पे निकल जाते हैं दो दो महीने के लिए बिना फ़ोन के, किसी को कुछ नहीं पता होता कि गए हैं और कब आएंगे, कुछ नहीं पता। चलिए अभी फ़िलहाल आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है या फिर सच में लग्जरी को छोड़कर फुटपाथ पर सोना इनका एक शौक था, मतलब एक ड्रीम था कि मैं ऐसे एक दिन सो के देखूंगा। आप लोग बताइए ज़रूर। नंबर है जी 9654896896 पर कॉल करके या मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो रेडियो महारानी के नाम से। फिलहाल जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा सा लाउड कर देता हूँ आप सभी के लिए।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

Cinemas, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कल संडे था और फादर्स डे था, मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई यूएस जाके मैं घास काटने वाला हूँ। नहीं नहीं, फादर्स डे का मेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, वो ये है कि एक आदमी यूएस में घास काट रहा था और फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने उसकी वीडियो देखी। और ऐसा कुछ घास काटने वाली बात नहीं है, यूएस में जाके घास काटने के बाद ये बंदा ऑडी में बैठ के गया है वापस। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यूएस में घास काटने वाला भी ऑडी में घूम रहा है। अब आप सोचिए कि या तो वो बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर वो बस मजबूरी में ये काम कर रहा है। होता है ना, दोनों चीज़ें होती है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से वो काम कर रहा है, बाकी उसको ज़रूरत नहीं है काम करने की। खैर बता दूँ आपको, ये एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने ये वीडियो डाली है और उसने वीडियो में दिखाया है कि ये आदमी आता है, घास काटता है और ये ऑडी में बैठ के जाता है। और करीब करीब ये अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 10 से 15 लाख रुपए एक महीने में कमा लेता है सिर्फ और सिर्फ घास काट के। अब जैसे मैंने ये वीडियो देखी, फिर उसके बाद मैं अगर कमेंट ना देखूं तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों को भी पता है कि इंडियंस में कमेंट करने की एक वो जो होती है ना चुल, वो सब में है। और कमेंट पढ़ने की चुल मुझे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जैसे कमेंट खोला तो सब लोग यही कह रहे थे, भाई मेरी भी नौकरी लगवा दो, एक बार बात करा दो इस बंदे से या फिर इसकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो कि हम लोग इससे बात कर लेते हैं और हम लोग भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि 10-15 लाख रुपए ही ना सही, 2-3 लाख रुपए महीना भी मिल जाए बहुत है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या ये सच है या फिर झूठ? क्योंकि इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी बना देते हैं, उनको पता है ना झूठ भी बोलेंगे तब भी बिक जाएगा। चलिए अभी रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना जो बैकग्राउंड में बज रहा है उसकी वॉल्यूम मैं तेज कर देता हूँ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बादशाह
1: Let's go.
2: एक ना अमेरिका की सिंगर है और उस सिंगर का नाम है टेलर स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब वो गाड़ी वाली स्विफ्ट नहीं, स्विफ्ट उनका सरनेम है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बादशाह और करण औजला की आवाज़ में था ये गाना प्लेयर्स। और जो मैं बात कर रहा हूँ अभी अमेरिका की जो सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना ये बहुत देखो देखने में सुंदर है ही, गाने भी अमेजिंग बनाती हैं और फिर उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर रिसेंटली 23 मई को ये क्लीवलैंड एक जगह है वहाँ पर, मतलब वहाँ की टीम को सपोर्ट करने गई थी और सिर्फ बास्केटबॉल का मैच देखने गई थी। और जिस सीट पर बैठ के इन्होंने बास्केटबॉल का पूरा मैच देखा था, सोचो उस सीट का क्या हुआ होगा। बस वही फैंस बहुत ज़्यादा हैं तो फैंस ने बोला इस कुर्सी को नीलाम कर दिया जाए और फिर उसके बाद इस कुर्सी को नीलामी के लिए रख दिया गया, जो कि अभी रिसेंटली 14 जून को $7,000 में बिक गई है। यार ऐसे कौन से फैंस होते हैं जो कुर्सी ले जा रहे हैं और कुर्सी ले जा करेंगे क्या, मुझे ये समझ नहीं आता। चलो नो डाउट फैन है, फैन तो कुछ भी कर सकता है। और बता दूं आपको $7,000 मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे अभी के हिसाब से तो करीब करीब 6.5 लाख रुपये इतने रुपए में बिकी है ये। और ऐसी चीज़ें इंडिया में तो होती ही नहीं, और अगर इंडिया में होनी शुरू हो गई, जस्ट इमेजिन विराट कोहली का यूज़ किया हुआ बैट, मान लेते हैं उनको हम लोगों ने 10 बैट पकड़ाए कि आप इसे यूज़ करो, उसको नीलाम करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कितने का एक बैट बिक जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 10 लाख रुपये का एक बैट बिक सकता है क्योंकि उनके भी फैंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं उस इंसान की सोच रहा हूँ जिस इंसान ने कुर्सी खरीदी थी टेलर स्विफ्ट की बैठी हुई कुर्सी जिसने भी ये कुर्सी खरीदी, अब वो इसका करेगा क्या, लाइक म्यूजियम में लगाएगा क्या, क्योंकि ये तो उसके लिए एक लायबिलिटी होगी, घर में पड़ी है, जगह घेर रही है बस और कुछ तो है नहीं। चलिए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। नंबर फिर ये वही है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ और ये गाना है मिक्स मैशअप। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है ना दिल्ली एनसीआर में, मन करता है पहाड़ों पे जाके बस जाओ, मगर पहाड़ों पे जाके बसना भी आसान काम थोड़ी है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो ये है कि देखो, पहाड़ों पर जाने का मन किसका नहीं करता। और अगर मैं बोलूँ कि मनाली जैसी जगह पे आप जा सकते हैं और पूरे महीने रहने का खर्चा आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये। मैं रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 12,000 रुपये में आप वहाँ पर रह भी सकते हो, आप वहाँ पर खाना भी खा सकते हो, सब कुछ मिला के 12,000 रुपये। तो क्या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। और ऐसी बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मनाली में रहकर रिमोट वर्क कर रहे हैं एक कपल है, और उन्होंने पूरी वीडियो डाली है। उन्होंने बताया कि देखो, हमने 1 RK का रूम रेंट पे लिया है जिसका किराया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये किराया, और बिजली का बिल वहाँ पर बहुत सस्ता है, 300 रुपये मात्र बिजली का बिल है, 5,300 रुपीज़ हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि 4,500 रुपये हमारा बाहर का खाना और ग्रोसरी वगैरह आ जाता है, माफ़ कीजिए बाहर का खाने पे 1,000-1,500 होते हैं, और फिर उसके बाद अगर इन्हें कहीं घूमने जाना होता है तो उसमें 500 रुपये खर्चा और हो जाता है। तो ऑल टोटल मिला के इनका पूरे महीने का खर्चा 12,000 रुपये है। दोनों के दोनों वर्किंग हैं, दोनों के दोनों पहाड़ों पर रह रहे हैं, और फिर उसके बाद एंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो व्हाट डू यू थिंक, जाना चाहिए पहाड़ों पर या फिर नहीं? मगर मुझे नहीं लगता कि एक रूम वाला कमरा 5,000 रुपये में मिल जाएगा। आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बताइएगा ज़रूर। नंबर फिर से वही है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, गाने का नाम है खामोशी। यहाँ सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आपको पता है कल मैच था इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का, और पता है क्या हुआ उनके साथ? हुआ ये कि इंडिया 900 रन बनाने वाला था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रोजेक्टेड स्कोर लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करी और खासकर वैभव सूर्यवंशी ने। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। स्पोर्ट्स के बारे में मैं बात ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है? ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्य और साथ में वैभव सूर्यवंशी, और जैसे ही ये दोनों आए तो फिर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जो कि इतने टाइम से नहीं चल रहा था वो कल चल पड़ा अचानक, और 11 बॉलों में, मात्र 11 बॉलों में उन्होंने हाफ सेंचुरी कर दी इस लड़के ने। फिर उसके बाद 29 बॉलों पे 94 रन बनाकर विकेट खो बैठा है लड़का। और बता दूं आपको, ये भी कैच आउट हुआ था छक्का मारने के चक्कर में। अगर छक्का लग गया होता तो 29 बॉलों में इस लड़के की सेंचुरी हो जानी थी, तो ये हो जाती है फिर फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई एवर। और टोटल 10 चौके और 8 छक्के मारे इस लड़के ने, मगर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी, और उनमें से हमारे कप्तान साहब तिलक वर्मा, उन्होंने भी 90 बॉल खेलकर 67 रन बनाए, मगर बॉल्स कुछ ज़्यादा नहीं खेल ली, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा खेली है वैसे तो। और अगर वापस वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो स्ट्राइक रेट वॉज लाइक 324.14 का स्ट्राइक रेट, आज तक किसी बल्लेबाज का इतना स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये लड़का आगे टीम इंडिया में आ जाएगा इस साल? मुझे तो लग रहा है कि आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना, इसको थोड़ा सा लाउड कर देता हूँ, और गाने का नाम है कातिलाना बाय तलविंदर। मैं बोलूंगा तलविंदर बाय कातिलाना जो भी है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर नहीं आता, रास्ते में आता है कूड़े का घर। मतलब कि आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर पहले कूड़ा नहीं हुआ करता था मगर अब बहुत ज्यादा हो गया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अभी रिसेंटली ही मैंने एक अंकल को देखा, उनके साथ एक भी नहीं बोलूंगा, दो अंकल थे एंड होंगी उनकी एज 70+। एंड वो लोग सुबह सुबह 6 बजे अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। सिर्फ अपने घर के बाहर नहीं, रोड पर भी झाड़ू लगा रहे थे, जो कि काम है सरकार का। वो काम वो खुद कर रहे थे और वो उन्होंने सारी की सारी मिट्टी उठाई, एक बड़े से कट्टे के अंदर डाली। एंड मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ हम लोग ये काम रोज़ करते हैं क्योंकि हमें अपने घर के आसपास चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी है। एंड ये होती है एक नागरिक की जिम्मेदारी, मतलब अपने घर और अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग भी सफाई कीजिए, बट हाँ कोशिश कीजिए कि हमारे घर के आसपास गंदगी ना हो। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मंडे। मंडे ब्लूज दूर कर दिए होंगे शायद मैंने, नहीं किए तो वापस आएगी गीत विदेश के बाद जिया, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर आप लोगों के लिए, प्यार भरे गाने लेकर। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए गाना अप टू यू धन धन्योरी वाला की आवाज में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है, और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही ये आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो देखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: लेके

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद
1: हाँ। पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपरहिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे, और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है। और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में

0: लाइट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
5: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पे क्लिक ना करें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: आजादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा भाई, है सिर्फ कानून के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: मकसद यही है।
1: भाई क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: तौबा तुम्हें एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: तो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर आग ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मन। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं अगो क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा
1: है। अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नसीहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक के

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि

0: बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छिपा है, पर उसके साथ एक शराब भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसे। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: साजन मोरे गए।